0: त्यसैले दान गरौं, सकेको गरौं सबैले गरौं।
1: अनुरोध शुक्ला हिलेटार शिवालय क्षेत्र संरक्षण समिति, शुक्ला गण्डकी 8 तनहुँ।

0: क्या प्रक्रिया? बिन पूछे ये काम किया? तुमने मुझे बदनाम किया।
1: बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम

0: गल्ला पट्टी का तो सब पे पानी मरवा छन की क्या हो कोई पनी छैन त दोरी गाउँ नि
1: ए कराओ चैलेंज पो गरे त म गाइदे गाइदे गाइदे त चैलेंज छ।